0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू, नॉर्थ फीस्ट, कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670-63 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: और फिर तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हां, मेरे नाल मेरे सत्कारयोग वीर जी भाई साहब भाई अवतार सिंह जी मिशनरी लाइन ते हाजिर ने। ते आओ उन्हां दा स्वागत करदे हां प्रोग्राम दे इस हिस्से दे विच, क्योंकि आपां अज दो हफ्तियां दे विचों गैप सी। सो इन्हां दा स्वागत करदे हां वीर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी
4: वाहिगुरू जी की फतेह।
3: जी वीर जी, की हाल चाल ने तुहाडे?
4: हाल ठीक आ। ते फिर अगे नाल जी, काफी फर्क पै गया मेरा, जो पेसमेकर पिया सी ओ ना ठीक हो रहा मैं।
3: अच्छा, हुण ठीक चलदा?
4: हां जी हां जी।
3: ते चलो फिर आपां शुरू करदे आज दा प्रोग्राम।
4: अज दा अपना टॉपिक हैगा चापलूसी अते भ्रष्टाचार।
3: जी,
4: ते आपां गुरु नानक साहिब तों लै के हुण तक दी गल विच विचार करांगे।
3: जी,
4: बाबे नानक दे वेले तों वक्तिया हुकूमत अते उस दे झोली चुक मुला मिलाने ब्राह्मण जोगी अते सिद्ध पीर आदक संत बाबे
3: जी
4: सिख धर्म नाल टकराउण लग पए सन। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख मिसलां दे वेले तां सिख पंथ दे विरोधियां ने अत ही चुक ली सी। हैलो,
3: हाँ जी, कह रही हूं।
4: सिखां नूं अपने घर घाट छड के जंगलां बेलियां दे विच जाना पिया
3: जी।
4: उस समय दौरान ही कांछी दी ब्राह्मणी पदैश उदासी निर्मले ਹੋਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ
3: ਜੀ।
4: ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ
3: ਜੀ।
4: ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ
3: ਜੀ।
4: ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ
3: ਜੀ।
4: ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਦੇ ਜੋਕਾ ਸਾਬਕਾ ਜਹੇਦਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ
3: ਜੀ।
4: ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ
3: ਜੀ।
4: ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੜੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਅੜੀ ਹੈ
3: ਜੀ।
4: ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਦੀ
3: ਜੀ।
4: ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ
3: ਜੀ।
4: ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
3: ਜੀ।
4: ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
3: ਜੀ।
4: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
3: ਜੀ।
4: ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਗਏ
3: ਜੀ।
4: ਇਵੇਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ
3: ਜੀ।
4: ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681, 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120, 4150, 109th एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने, ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: हे भाई, जदों जीव शब्द नाल नहीं जुड़िया, बाणी दे नाल जुड़िया नहीं, तो फिर परमेश्वर दे नाम दे रस दे स्वाद नूं उन्हें प्राप्त नहीं किया। ये मनुखा जन्म जिहड़ा ये बेअर्था गवा लैंदा, तो फिर हुंदा की आ, जम जम मरै मरै फिर जम्मै, बहुत सजाए पया देश लम्मै, जिन कीता तिस न जानी अंदा, ता दुख सह प्राणिया। फिर बार बार जमदा है ते बार बार मर जांदा है।
1: बिस्टा के कीड़े बिस्टा माहे समाने, मनमुख मुगद गुबारा।
0: जदों जीव वाहिगुरु नूं भुल जाण, शब्द दे नाल ना जुड़न, ओ मनुख मनमुख ने, अपने मन की मर्जी अनुसार चलते ने, मूर्ख ने, माया मोह के गुबार च फस जाते। हे भाई, जिमें कीड़े बिष्टा दे विच ओ समाए रहिंदे ने, जुड़े रहिंदे ने, अजिही हालत उन्हां मनुखां दी निंदिया चुगली करके गंदगी खाण वाली बिष्टा दे विच समाउण वाली।

अकाल पुरख परमात्मा ने जो मनुखां दी जिंदगी विच लिख दिता, जिन्हां उत्ते उस मालिक ने रहमत कर दिती, गुरद्वारे लाए पावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया, इक ना जीवां दा गुरु चरणां दे नाल प्यार बना दिता, उन्हां नूं गुरमुख बना दिता। एक जीव मनमुख विकारी बिरती वाले तो असल दे विच तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह कह जन होई। पातशाह जी कह रहे ने, वाहिगुरु जी तुसी जो धुर तो जीवां दे कर्मां विच लेख लिख दिता है, उस नूं मेट कोई सकदा नहीं, जो तू करदा सोई संसार

देव जी महाराज जो दखण दी बोली सी उस बोली नू क्योंकि जिथे जिथे पातशाह जी गए उहदे मुताबक सतगुरां ने बाणी दा उचारण किया। मारू राग दी जो ये वार चल रही है 1096 अंग उत्ते सुभाए मान सच्चे पातशाह जी की

हे भाई जिवें एक छप्पर हुंदा है गहे डलड़ा दा जिहड़ा अर्थ आ तिरण जिहड़े सुके घा दे तीले हुंदे आ ते फिर पातशाह जी कहिंदे आ इह मनुख जिहड़ा गाफल है क्योंकि साडे शरीर दी हालत इह आ जिवें कोई गरीब

आप ही संसार दी बनत बनाई, तुसी जीवां दे अंदर जीवात्मा भी टिकाई ते ए माया भी टिका दिती है। शिव शक्त आप उपायक है, करता आपे हुक्म वरताए। आनंद साहब दे विच भी आपां बचन पढ़ते सुनते हैं, हे पातशाह जी ये तुसी जीवां दे अंदर अपनी जिंद भी टिका दिती, अपनी अंश अपनी आत्मा भी टिका दिती, माया भी बता दिती है। हुण आत्मा ते मरदी नहीं, विकार मर जांदे आ तदों जदों गुरु दे शब्द नाल जीव जुड़ जांदा है। तो इहो सच्चे पातशाह जी चंगा मंदा आप लायन सो करन, जे आप कराए करतार

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: तन ओ मस्तक तन ओ

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशंस तों हफ्ते दे सत्तो दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stanford।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईवस्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6660 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: मैया की

1-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary. Program da eh hissa tuhade tak Cassidy Hay Injury Law ton Tara Cassidy ji de sahyog naal pahunchaya ja reha hai. Inna ton kise vi tarah de motor vehicle accident injury claim bare koi vi jankari lain layi tusi Tara Cassidy ji nu 403-777-1099 yani 403-777-1099 te sampark kar sakde ho. कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede Ground।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.

मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा अंतम श्री गुरु रामदास सोडी सुल्तान हरि अमृत पिने लोईना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसाया कंचन सो विन्ना गुरु मुख रंग

0: सब जन्म धन तन्ना जन नानक मुस्कर चकोलिया।
1: तुंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवै अकाल मूर्त अजुनी सह पंग गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक पी महले पहले के लिखे दे आसरा जे की तुही श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपनी दिहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन हो दया गुर बिन पूर अंधार महला पहला।
0: नानक गुरु नाथ चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ जो छुट्टे तिल बुआड़ जो सुन्ने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे कहो नानक सोना फलिया है फुलिया है बपड़े पीतल विच सुहा पड़ी अपने आप सजो आपने रचियो नाओ दोई कुल सजिए कर आसन डिटो चाओ दाता करता आपको तुस दे वह करे पसाओ तुझा नहीं।

पछताया फिर संकट जो गर्भ ना आयो, फिर संकट जो गर्भ ना आयो। जपयो तुम अर्जन देव गुरु, जपयो तुम अर्जन देव गुरु, जपयो

अर्जन देव गुरु असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राजे गुर सतगुर सच्चा साव है।

कबहला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खा।

सच तो पर जाने जा आत्म तीरथ करने वा सतगुरु नो पुछ कै बैरे करे निवा सच सपना

0: हरदास है, हरदास बनिहारो बनिहारो
1: लोक मल्ला पहला सच काल कूड़ वरते अकल कणक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवेदाल जे को होए ता उगवे रुति रुत होए नानक पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पै विच खुंभ चढ़ाइए शर्म पाहो तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
0: लब पाप दुए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदा काम ने सद पुछिए बैबे कर बिचा अंधी रियत ज्ञान होनी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूपरे सिगा उचे कुके वादा गावे जोदा का बिचा मूरख पंडित एक मत जित संजय करे प्या धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड बहे करवा सबको पूरा आपे होवे कटना कोई आख है पर परवाना पीछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
1: बदी सो बजग नानका सच्चा वेखे सो

जिनकी लिख पद पवे चंगे से के पौड़ी तोर कर्म जिनक तुद पाया ताती खस्म प्याय न जनता के वस किशना है उद्वेकी जग दियो पाया किरण तू मिल ले के आपको तो दुख वाया गुर कृपा ते जाने जिथे तो आप जाया सहजे ही सत माया ज्यों

दुख दारू सुख रोग प्याजा सुख ताम ना हुई, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना हुई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ, जात में जोत जोत में जाता कलकला पर पूर रहा, तू सच्चा साहेब सुत सवाले हो जिनकी थी सो पार पया, कहो नानक करते किया बता, जो किस करना सो कर रहे।

0: कृते सर्व शब्द में एक शब्द जे को जाने पे हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
1: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव।

0: रहे जल बिन कुंभ ना होए,
1: बदामन रहे
0: गुर बिन ज्ञान ना होए, बौड़ी पड़ा होए गुण का दायो मी साध न मारिए जे कल कल ना टीवे हो ना पचारिए ऐसी कलन खेड़िए जित कर के दया हारिए पड़िया ते ओमिया विचारे अगे विचारिए मोह चले तो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए।

हर दे हो सुपाए, खिन पल करी न जीवउ, बिन देखे मरा माए। हर दर्शन की, हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए, दर्शन तृप्ताए। देहो दरस सुखदात्या,

अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास

0: कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सर्व ने सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भनियो। लोयो होए ओ लाल नदर सतगुर जद तारे। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचारे। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए।
1: जाम गुरु होए वल तनहे क्या गौरव दीजे। जाम गुरु होए वल लख बहे क्या कीजे। जाम गुरु होए वल ज्ञान र ध्यान अनन पर। जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर। जो गुरु गुरु अनस जपा दास पाठ बिनत कह। जो गुरु नाम रिद महतर सो जन्म मरण दो ते रह।
2: गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कौ नल कह। जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अक्यत संसार मह।
3: गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाध सब दिसकेरे। फुन दुख नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बसत नेरे। पूरो पुरख देहर सिमरत मुख देख तक जाहे परे रे। जौहर बुद्ध तिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। जौहर बुद्ध

0: गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होते जो प्यास प्योस बन के बंचत सिद को बिद मिलायो, पूरन पाओ मन ठौर बसो, रस बासन सो जो दैद सुतायो। गोबिंद वाल गोबिंद परिसम, जलन तेर विपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।
1: समरथ गुरु सिर हाथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरयो, निस्वासर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भान डरयो, पन दास वास जगतर गुरु की, पारस भेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।
2: अपरा खो दास पाठ किलाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखट भारे कर आज, फुन द्रोपती लाज रखी हर प्रभ जी।

0: दास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखो सरनाई।
1: कहटल गोर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुरसो चटिया उद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह सिर शाह शाह जिस पास बैठियां सोई सबना दावे साहो। सज्जन सचा पातशाह सिर शाह शाह जिस पास बैठियां सोई सबना दावे सतनाम। श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गोर पूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने ताप गवाया गोर पूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने वेदन सत गुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई जो मंग है सो ले रहे प्रभ अपनिया संतां दे रहे हर गोविंद प्रभ राखिया जान नानक साच सुपाखिया जो मंग है सो ले रहे प्रभ अपनिया संता दे रहे

0: जाकुम उनका अंतर फिरत सकल जुग कब हुन को पावया तुम परगास को वेद बानी सहत बिरंच जस गावे जाको सेव मुन गए न त जात कबे लास को जाकु जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तत् जटा जूट पे किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख भाई के पतारी जी नाम की बढ़ाई दे गुरु रामदास को नाम की बढ़ाई दे
1: गुरु रामदास को
0: नाम की बढ़ाई दे
1: गुरु रामदास
0: तेरी शरण जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निष्पासुर हर चरण निवास ताते संगत सदन

समरथ गुरु सिर हाथ तरे ओ गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरे ओ निस्बास एक समान सयान सुनाम सुने सुत पान लरे ओ पान दास वास जत गुरु पारस पेट परस करे ओ रामदास गुरु हर साथ कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरे ओ समरथ गुरु

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, के जन्म तुम्हारे लेखे कैरवदास आस लग जीवो, कृपा दर्शन देख।

0: कहते पवित्र सतगुरु रहे अपर पूरे बिनवंत नाथ गुरु चरण लागे बाजे अण तू रे
1: बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास। राम दस होई सहाय अर्जन हर गोविंद न सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिऐ घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा

0: चौके पास खाकन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण पिया ओह मुआ ओह चढ़ पया वेद गा दिया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गा लख ठगियां पे नामियां रात दिन जीना तक पाहो कतिया बमन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग न टुटई जे तक होवे जोर वाला।

गोरे अर्जन मिटो कुर्बानी गोरे अर्जन ओ कुर्बानी गुरमुख सुख फल हिरम रस गुरमुख सुख फल हिरम रस सहज समाध साध संग जानी सहज समाध।

0: कर लीजे।
1: लोक महला पहला गहु ब्राह्मण को कर ला वो गोबर तरण न जाय तो तीर्थ का जप माली कान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बस संजम तुरका पाई सोडी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
2: मानस खाने करे नवाज छुरी वगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना प्यावे ओई सार कुड़ी रास कुड़ावा पाड़ कूड़ बोल करे आहार शर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा परपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरो वै परवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा पकड़ा खाना चौकी उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे ओ अन असादा फिटे तन फिटे फेड़ करें मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आइए सुच हो वे ता सच पाये पौड़ी चते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाए दाया पिनी बढ़ियाईया आपे ही तर्म कराए दा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिरे तंदे लाए दा नगर बहिले सुल्ताना काऊ गया दर मंगन पिकना पैदा पिकना पैदा दर मंगन पिकना पैदा
3: ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੋ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ।

0: ला पहला जे मुहाका कर मोह पितरी दे अगे बस समझाणी है पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्पिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जोरू सरना अवड़ी आवे बारो बार जूठे जूठा मुख वसे नितन तो होए कुआ सुचे ए ना आखिए वेंजे पिंडा धोई सुचे सही नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी जिथे जाए बहन मेरा सत गुरु सुथान सुहा

कोई करगल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिख मन मिठा, हर कर गए गुर सिख पैनाई है, जिन मेरा सतगुर उठा।

0: जय सत वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह फतेह,
0: वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह,
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
2: फतेह। ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਮਨੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇਤ ਸਰ।

0: फिर शाह पातशाह हो निचल चौर छत
1: पौड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने जप करतबा जी आंद जी सब नाला सब तेरे वास तेरा कर भला तेरे करे नंद बधाई तू कर मान मत तेरा अपना आप कर
0: सर्व कला पर पूर दिसे जत कदा
1: नानक दास दास आगे बिनवता
0: तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
1: पार तेरा मर्तबा रंग बरंग ने जपन करदा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला
0: तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जाए सर्व कला भरपूर दी सजत करता नानक दास दास तुद आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवसरात दोए दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म दू करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आए आ गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आए आ गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: बोला जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगौते जी सहाय वार श्री भगौते जी के पातशाह दसवे प्रथम भगौते सिमरका गुरु नानक लय ते आए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जैस डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां तोह साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आ रहा नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे ਜੇ ਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ

0: स्नान चौकिया चंडे भोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्चे मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू वसोड़िया गया है फुले दरसन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नू बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान। नी उट्टिया दी ओटा तान तान श्री गुरु रामदास साहेब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर सबद चौंके आसा दीवार दे भोग जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करने सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद हो वन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत। अजूनी सह भंगुर प्रसाद चक्र चिहन यर भरन जात यर पात नहन जिह। रूप रंग यर रेख पेख को कह ना सकत केह। अचल मूरत अनुभाव प्रकाश अमितोज कह जय। कोट इंद्र इंद्राण साह सहन गणित जय। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत। तय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत। काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण। बस है संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार तास बिन यवर न कोई। मन बच जिन जाने पायो तिह समसर सोई। तारन गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रहे ओ पार। पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर। मेल लहो दयाल टह पै द्वारिया। रख ले बहु दीन दयाल प्रमत बहु हारे।

0: भगत वशल तेरा बिरदहार पत्त उधारियान, तुझ बिन नाही कोए बिनो मोहे सारियान। कर गहले हो दयाल सागर संसारिया, लिख कत है ना छूटियन, खिन खिन भूलनहार, बखसनहार बखसल, नानक पार उतार, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परस आए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, हो वै सिफत खसमदी, नूर अर सौ कुर सौ चटिया, तद डिठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोही, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोही, सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला पंजवा, ताप गवाया गुरपुरे, वाजे अनहद तूरे, सर्व कल्याण प्रभ कीने, कर कृपा आप दीने, ताप गवाया गुरपुरे, वाजे अनहद तूरे, सर्व कल्याण प्रभ कीने, कर कृपा आप दीने, वेदन सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सरसे होए, हर हर नाम त्याई, जो मंगह सो ले वह, प्रभ अपनिया संता दे वह, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक ਸਚ ਸੋ ਪਾਖਿਆ ਜੋ ਮੰਗਹਿ ਸੋ ਲੇਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇਵਹਿ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚ ਸੋ ਪਾਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦੀਨੇ
1: ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੇਡੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੇ ਟਿਊਨ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जा फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी आज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, Northeast, Calgary।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

नानक कूड़ रहा भरपूर, मथे टिका तेड़ धोती कखाई, हाथ छुरी जगत का आशाई, नील वस्त्र पहर हो वह परवान, मलेश तान ले पूज है पुराण, आपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना, देख चौका कड़ी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एह अन असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करे न, मन जूठे चुली परे न।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਅਰਗਿਵਰਸ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਉਣਾ, ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ abmcollege.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

गिन गिन कुमार खिन खिन खिन खिन पुलन खिन कहिंदे ने अख चमकण दे शब्द इनू वैसे निमख कहिंदे ने ता सा संगत 25 वार अख चमदी है ता फिर एक चसा बन विश्वे चसियां घड़ियां पहरां थिती वारी माह हुआ ता आपां अरदास करनी महाराज असी ता अख चमकण दे समय च पता नहीं की कुछ सोच जाईदा किन्ना मन च बुरा कुछ होंदा है बादशाह साडे औकण बख्शो एक बार करो अरदास ते आखो

महाराज मत भरी हो बापा ना, कहंदे ओदा भी कोई तरीका, भरीए मत बाबा के संग ओ तो पैनावे के, पढ़ो भरीए मत बाबा के संग ओ तो पैनावे के, गज के पढ़ो भरीए।

श्री मान भाई साहब भाई गुरदास उन्होंने एक पौड़ी लिखी, रब दी दरगाह विच सिर्फ रब दा नाम चलदा है। पातशाह ने बाणी अंदर जवाब दिते, साडे सारे जेडे देश विच जाओ उसे देश दी करंसी चलदी, उत्थे एयरपोर्ट ते उतरो ते इक काउंटर बनिया हुंदा है जिथे करंसी चेंज हुंदी है, उत्थे चेंज करके चलन। जिहड़ी कंट्री विच जाओ उसे देश दी करंसी, एदां रब दे देश जाइए, निरंकार के देश जाहे तां सुख लहे महल। भाई गुरदास ने लिखिया कहिंदे भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। एक राजा जनक होया, उन्हें बड़ी तपस्या भगती की, संसार दी मोह माया विच रहिंदे उन्हें मन नूं ओ जन्म जित के गया। राजा हुंदिया जे कोई सब तो वड्डा भगत है ओ जनक। कहिंदे जदों जनक दी मौत होई ओ रब दी दरगाह विच गया, ओदी जय जयकार रे रे दरगाह कहे ना कोऊ, आओ बैठ आदर शब देव। ओदा बड़ा आदर होया जदों धर्म राज दे गया, धर्म राज भी उठ के खड़ गया। इन्ने नूं उसे वक्त धरती तो सैकड़े लोग होर मर के जा रहे ने। जदों उन्हां दीआं रूहां नूं लिखा मंग के रब नरकां वे सुट रहा, जाओ धरती ते नरक भोगो दुख भोगो, जीव जानवरां दी जून धारण करो। कहिंदे उन्हां लोकां दा रोना करलाउणा ते बिरलाप सुनिया ते कहिंदे जनक ने पुछया धर्म राज नूं वे आ बंदिआं नूं इन्नी सजा कुट मार, इन्हां नूं रो रहे ने क्यों? कहिंदे जी इन्हां नूं टिड्डियां जूनां मिल रही, ये गंदगी दे कीड़े बन रहे ने, धरती ते बार बार सुटे जा रहे ने। कहिंदे क्यों? कहिंदे जी नी नाम नहीं जपया, इन्हां ने चंगे कर्म नहीं कीते, ये धरती ते पाप कुकर्म कमा के आए ने। ते कहिंदे जनक नूं दया आ गई। राजे जनक ने कहा धर्म राज इन्हां विचारियां नूं छड़ दे, देख किन्ना रो किन्ना तरला कर रहे ने, ओ इन्हां दे कर्म माफ कर दे। कहिंदे धर्म राज ने कहा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तां सेवक हां सेवादार, मालक तां कोई होर है, मालक तां रब है, मैं ते रब दे हुकम वास्ते हिसाब किताब करन लई बैठा। जिवें साध संगत कोई दुकान ते नौकर रख्या होवे सेवादार, वो अपनी मर्जी नाल रेट घट नहीं कर सकदा, वो कहिंदा भाई मालक नूं पुछ लो। जदों राजे जनक ने कहा माफ कर देना, धर्म राज कहिंदा मैं नहीं कर सकता, मैं तां सेवादार, इह कम तां रब कर सकदा है। ते जनक ने कहा इन्हां दा छुटकारा किवें होणा है, वो कहिंदे नहीं नाम नहीं जपे इन्हां दा कदा छुटकारा, इन्हां नूं लेखा देना पैणा। ते कहिंदे जनक ने कहा जिन्ना फिर मैं जपया मेरी कोई भगती है जिहदे करके मैनूं इन्ना अदब दे रहे हो, लो फिर आ पिया मेरी भगती तुहाडे गहने रखी, इहदे बदले च जिन्ने बंदे छड सकदा छड। जिवें गहने नहीं रखदे जमीन, गहने रख के पैसे लै ली, फिर पैसे रख के गहने छड़ा ली दी है जमीन। कहिंदे जनक ने अपना जप तप भगती सिमरन रखिया आ पिया गहने, ओ जिन्ने छड़ सकदे दे बदले छड़। कहिंदे रब दे नाम दी इन्नी शक्ति, अकाल पुरख दी भगती विच इन्नी वड्डी बरकत, धर्म राज ने ओदे जपे हुए नाम दे बदले एक दो चार दस बीह सैकड़े हजार लखां। कहिंदे जिन्ने लोग सी नरक दा कुंड खाली हो गया, किसे नूं जमा दी मार नहीं सहनी पई, जुन्ना नहीं भुगतणियां पईयां। उस वक्त जिन्ने लोग मर के आ रहे कर्म भोग रहे सी सारे मुक्त कर। ते कहिंदे दूजे पासे नाम ओ तकड़ी विच पासक हिलिया वी नहीं। ते जनक ने कहा जे भगती मुक गई इन्हां दे बदले मैनूं नरक दे दी, जे भगती मुक गई इन्हां दे बदले मैं लिखे दवांगा। कहिंदे रब दे नाम च इन्नी वड्डी शक्ति है, ओ जपण वाला आप मुकत ते जेदे वल नजर करदे उहनूं वी मुकत करदे। हर का संत मरे हड़ंबे तां सगली सैन तराई। गुरु विच इन्नी वड्डी पावर है के नर

आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। भाई गुरदास साहब की हुण पौड़ी सुन। भाई साहब लिखते भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। माया विच उदास रहा कई बार मौका ही नहीं मिलता बंदा तां कहिंदा मैं तां कदे बेईमानी नहीं कीती। उहनूं मौका ही नहीं मिलिया। मौका मिलने तो बाद बंदा उह चीज़ तोक जाए वह बड़ी वड्डी बख्शिश है। तुहाडे कोल पैसा होवे अयशी कर ले तुसीं अयशी ना करो फिर बहुत वड्डे भगत। जिन्हां कोल है ही नहीं घर रोटी पकदे उहनां की करना बेचारे। साध संगत मौका मिलने के बावजूद पाप ना हो समझो रब की बख्शिश है ओदी नदर कृपा ते फिर वह बड़ी वड्डी बख्शिश। माया बहुत राजा सी पर पाप नहीं कीते। भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। देव लोक नू चलिया मर के गण गंधर्व सभा सुखवासी ओदी जय जयकार हुई। कहिंदे अगे जदों गया देव लोक नू चलिया गण गंधर्व सभा सुखवासी ते अगे जाके की वेख्या बिल लावण जी नरक निवासी। कर्म भोगण वाले लोग रो रहे धर्म ते फिर जनक ने की किया धर्म राय नु आखे उन सबना दी कर बंद खलासी। ते धर्म राज कहिंदा मैं नहीं कर सकता क्यों ओ कहिंदा हो सेवक करे बेनती धर्म राय हो सेवक ठाकुर अविनासी। मैं ता सेवादार हां जी। कहिंदे फिर कहिंदे जी नाम नाल मुक्त हो सकते। ते जनक ने कहा

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। यह 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करते ने। इना तो किसी भी तरह के नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

नाम दी प्राप्ति करके जिन्हां ने जपया है सिख गुरु दे सेवक संत वाहिगुरु परमात्मा दे भगत जिहड़े ने ओ जिहड़े आ ओ खेड़े विच हन उस खेड़े नाल दिन रात ओ जुड़े हुए हन जिहदे नाल जुड़न करके उन्हां ने परमात्मा दे नाम नूं ध्याया ते गुरदेव सच्चे पातशाह जी ने समझाया सिखा जे तू अपने मनुखा जन्म नूं सफला करना ते तू ही उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाम नाल जोड़। ओ नाम की है?

0: इस प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे जदों नाम नाल जुड़ेगा गुरदेव सच्चे पातशाह तेरे जन्म नूं सफला कर देंगे।
1: रहाओ
0: विश्राम दे करके गुरदेव समझा रहे ने, ये जड़ा रहाओ है ना, इहदे अर्थ बहुत गहरे ने। मनुख की जिंदगी विच बंदा जिंदगी की रफ्तार विच इन्नी तेज दौड़ रहा है कि इनू चेता ही भुल गया है कि मैं टिकना है। हरेक शब्द विच गुरदेव सच्चे पातशाह जी रहाओ वरत के सिख नू आवाज मारदे ने, सिखा जिंदगी उदों सफल होनी है जदों टिक जाएगा, जदों टिक के नाम जपेगा, बंदगी करेगा, ये बंदगी तेरे जीवन नू टका देगी। क्योंकि टिकिया होया दे नू ही गुरु घर दे विच प्रवानगी मिलती है।
1: जो मंगे है सो लेवे है,
0: जो मंगे सो लेवे। गुरबाणी दा एक बचन है, जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नित पढ़दे हां, जदों सिख अरदास करदा है ते इह शब्द दी अरदास करदा है, शब्द सिख दी जुबान ते हुंदे ने। सच्चे पातशाह तेरे दर तों तेरे घर विचों जो भी दात मंगदे आ आप दे दिंदे हो, पर जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी नूं पढ़दे आ ते गुरदेव इस शब्द दी व्याख्या नूं समझाउंदे ने। अपने घर विच बच्चे छोटे होंदे आ ना, पुत्र पिता कोलों 10 रुपये मंगे ते पिता सवाल करदा है की करने ने, किथे वरतने ने, की खाना है, किथे लेके जाने है, पुछदा है। जे तां उहदी वरतों ठीक है ते पिता अपने पुत्र नूं पैसे दे दिंदा है। एक उदाहरण होर है, एक मां बाप अपने बच्चे दे नाल बाजार गए ते नाल एक रिश्तेदार है। बच्चे ने जिद कीती, उन्हें खाण वास्ते कोई मठियाई मंगी ते मां ने लैके ना दित्ती, बाप ने लैके ना दित्ती। नाल जाण वाला रिश्तेदार कहन लगा बच्चा रो रहा है, कुरला रहा है, ते चल मैं लै देना। उन्हें दुकान तो कोई मिठी वस्तु खरीदी ते बच्चे दे हाथ ते धर दित्ती, बच्चे ने खा ली। उहदे मन विच आया कि मेरी मां मेरा प्यो जेड़ा है एक किड्डे करूड़ ने, मैं रो रो के मंग रहा हां ते इन्हां ने दित्ती नहीं। आ नाल आया रिश्तेदार किड्डा चंगा है, इहदे कोले मैं मंग भी नहीं रहा, इन्हें मैनू खाण वाला पदार्थ लै दित्ता है मिठा ते मैं बड़े आनंद नाल खा लिया है। विद्वान महापुरखां ने व्याख्या की, कहन लगे जदों रात दा समा होया ना, पुत्र दी दाड़ विच दर्द होया, फिर उन्हें आवाज रिश्तेदार नू नहीं मारी, फिर आवाज अपनी मां नू मारदा है, मां मेरी दाड़ विच दर्द हो रहा है, कोई हल कर, कोई इलाज कर। मां कहिंदी है पुत्र मैं तैनू समझाया सी ना, हुण तू विलकदा है, तेरे नाल मां भी विलक रही है। उस रिश्तेदार नूं इस गल दा कोई फिक्र नहीं है, कोई पता नहीं है। गुरु कोलों सिख दातां लैण आउंदा है, जे गुरदेव कोले दातां मंगदा है ते गुरदेव जानदे ने केड़ी दात इस सिख नूं देनी है, केड़ी नहीं देनी, केड़ी इहदे जीवन वास्ते चंगी है, केड़ी माड़ी है। जदों नहीं ना मिलदी फिर निराश होके दंभियां पखंडियां दे डेरियां वल होरना वल प्रेरित हो जाता है, ते जदो जिंदगी विच तड़फदा है ना, फिर मत जाणो कि तुसी तड़फदे हो, नहीं तुहाडा गुरु भी तड़फदा है। गुरदेव ने बाणी विच लिखिया है, सिखा दुखां सेती डेहोंगया, सूलां सेती रात, दिन दुखां च बतीत हुंदा है, रात तेरी सूलां वर्गी लंघदी है, खड़ा पुकारे पत्नी तेरा कपड़वा, तेरा गुरु पत्तन ते खलो के आवाजा मार रहा है, सिखा तेरी जिंदगी दा बेड़ा डुब रहा है, इनू बचा। जेड़े सुन लेंदे ने ओ गुरदेव दी आग्या विच आ जांदे ने, ते जेड़े आ जांदे फिर उन्हां दे प्रथाए महाराज जी ने बचन लिखिया होया है। पुत्तर जवान होया, पिता ने रिश्तेदार सज्जन मित्र एकत्र किते, सारे कारोबार विहार दियां चाबियां पुत्तर दे हाथ ते रख दित्तियां। कहन लगा अज तो बाद सब कारोबार विहार दा मालक तू है। पुत्तर हैरान होया, कहन लगा बचपन विच 10 रुपये मंगदा सी ते 100 बार पुछदे सी, अज मैं वड्डा होया ते सारा कुछ ही सौंप दिता जे। पिता ने जवाब दिता, कहन लगा जदों तू छोटा सी ना तेनू समझ नहीं सी कि तू माया नू किवें वरतना है, अज तू जवान हो गया, अज तेनू समझ है, अज मैं सब कुछ ही तेनू सौंप दिता है। बस ये कहानी साड़ी ते गुरु दी है। गुरदेव ने बचन लिखा, पिता कृपाल आग्या एह कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। गुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन लिखा, कहन लगे जदों सिख सियाणा हो जांदा है ना ते फिर गुरदेव ये आग्या कर देंदे ने कि ए मेरा सियाणा पुत्र है, जो मंगदा है इनू दे दिता जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थे समझा रहे ने कि जो भी दात गुरु कोलो मंगदे ने, जेड़ा उहदा नाम जपण वाले है ना, सच्चे पातशाह सब दातां झोली विच पा दिंदे हन।
1: प्रभु अपने आ संतां देवै है,
0: अपने भगतां नूं अपने संतां नूं सब दातां दे के नवाजदे हन।
1: हर गोविंद प्रभ राखिया,
0: इसे तरह जिवें ताप तों गुरदेव सच्चे पातशाह जी ने अरदास करके उस परमात्मा दे चरणां च अरदास कीती कि हे वाहिगुरु परमात्मा, बालक हर गोबिंद दी रखिया तेरे नाम करके तेरी बाणी करके हुई है। उही बचन सिखा नूं समझा रहे कि सिखा जिंदगी च कदे दुख आवे सुख आवे अपने गुरु दा पल्ला नहीं पकड़ना, जदों अरदास करेगा गुरु तेरी नेड़े होके सुनेगा।
1: जन नानक साच सुपाखिया,
0: इसे तरह जेड़े गुरु दे सिख हन, सतगुरु सच्चे पातशाह जी सच्चे नाम दी बरकत दे के उन्हां नूं एक ज्ञान प्रदान कर देंदे ने, उन्हां ते बख्शिश करदे ने। सिखा उस वाहिगुरु दे नाम दी सोझी रख, उहदे नाम नाल जुड़। जदों नाम नाल जुड़ेगा तेरा संसार विच आया होया सफला होएगा, तैनू किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ जिहड़ी है वह तेरे जीवन विच नहीं आएगी, क्योंकि पूरे गुरु का पला पकड़न करके तू नाम नाल जुड़ जाएगा। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा सदका चल रही लड़ीवार कथा दे नाल आपा सांझ पाईए जी।
1: दखने महला पंजवा,
0: पंजवें गुरदेव सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी आप कृपा करके समझा रहे हन।
1: आगाह कूत राग पिछा फेर ना मोहडड़ा,
0: सतगुरु सच्चे पातशाह जी का बचन है। महाराज कहिंदे कि जेड़े भगती दे मार्ग ते तू चल पिया है, जदों वकारां नूं छड के नाम जपण वाले मार्ग ते चलिया है ते फिर पिछा भौंके ना वेख, क्योंकि बंदा मोह दा बद्दा होया पिछे वेखदा है ना, परिवार अल पत्नी अल कारोबार विहार अल, यह सब माया दा रूप है, यह तेनू पकड़ के रखदे ने। सतगुरु कहन लगे एदा नहीं, अगाह को तरंग अपने कदम उस वाहिगुरु दी भगती दे उपर अगे वाल लैके चल।
1: नानक सिज अहे वार बहुड़ ना होवी जनमड़ा,
0: सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे ने यह जिहड़ी समझ है जदों तू अपने मन विच वसा लेगा उस वाहिगुरु दे मार्ग ते चलेगा ना ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
1: ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
0: ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1: ਸੱਜਣ ਮੈਡਾ ਚਾਈਆ ਹੱਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ।
0: ਸੱਜਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਬਣਾ ਜਿਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
1: ਹੱਬੇ ਜਾਨਨ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਨਾ ਠਾਹੇ ਚਿੱਤ।
0: ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।
1: ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
0: ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1: ਗੁਜੜਾ ਲਦਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ।
0: ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ

0: मैं जदों का मैं तेरा बन गया हाँ, मनमुख जिहड़ा मन वह बंदे का बंदा बनता है, पर जिहड़ा नाम जपदा है गुरु के मार्ग ते चलदा है वह गुरु का बंदा बनता है। जिन्हें गुरु के पल्ले नूं पकड़ लिया है, सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे जदों का मैं तेरा बन गया ना, वाहिगुरु तू सारियां दातां मैनू सौंप दित्तियां हन।
1: लखमी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा,
0: किसे प्रकार दी कोई तोट नहीं आउंदी, खांदा भी है खर्चदा भी है

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंप

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जा विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता

4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 4039-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-777-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670, 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लेके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue North East Calgary। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3232 32nd Avenue NE कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दुख दारू सुख रोग भया जस गुताम ना होई। करता करना मैं नाही जाहू करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखी।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेओ बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा।
सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पहव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलिश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा

नाम दान इस नान दिड़ गुरमुख भाई भगत निस्तारा। गुर अर्जन सच सिरजन हारा। गुर अर्जन सच सिरजन हारा। सुकहु टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया। तुद डिठे सच्चे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तना श्री महला पंजवा। अब हर राखनहार चितारिया। पतित पुनीत किए खिन भीतर।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street Northeast Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।